0: ये आकाशवाणी का तिरुवनंतपुरम केंद्र है। आज के हिंदी प्रसारण में आइए सुनते हैं डॉक्टर कृष्ण प्रीति एआर की वार्ता, हिंदी के महान कवि मैथिली शरण गुप्त।
1: अगस्त 1886 को झांसी के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। मनुष्य जब अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है, तब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाता है। मैथिली शरण गुप्त का जीवन इसी अर्थ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सादगी, विनम्रता, सज्जनता, सौमनस्य, धार्मिक आस्था और जन कल्याण की भावना उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं थी। वे मूलतः गृहस्थ जीवन जीने वाले आस्तिक और वैष्णव संस्कारों से प्रभावित कवि थे। उनके लिए कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, वे कविता को समाज के लिए उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण मानते थे। उनके पिता सेठ रामचरण परम वैष्णव थे। उनकी माता का नाम काशी भाई था। गुप्त जी पांच भाइयों में तीसरे थे। उनके भाइयों में महाराम दास, रामकिशोर गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और चारुशील शरण गुप्त प्रमुख थे। परिवार में सभी भाइयों के बीच गहरा प्रेम और आत्मीयता थी। उनका पारिवारिक वातावरण धार्मिक और संस्कार पूर्ण था। उनके पिता का अधिकांश समय भजन, पूजन और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बीतता था। घर में रामायण का पाठ और भागवत चर्चा होती रहती थी। इस धार्मिक वातावरण का गुप्त जी के व्यक्तित्व और काव्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके काव्य में राम भक्ति और वैष्णव भावना की जो धारा दिखाई देती है, उसका स्रोत उनके इसी पारिवारिक संस्कार में खोजा जा सकता है। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्थित आधुनिक शिक्षा के रूप में नहीं हुई। उनके पिता की इच्छा थी कि वे अंग्रेजी पढ़कर किसी उच्च पद पर जाए। उन्हें झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में भी भेजा गया, लेकिन पढ़ाई की अपेक्षा खेल खुद में उनका मन अधिक लगता था। अंततः उन्हें वापस जिरगा बुला लिया गया और घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन औपचारिक शिक्षा की सीमाओं ने उनकी प्रतिभा को रोक नहीं पाया। उन्होंने जीवन को ही अपनी पाठशाला बनाया। धार्मिक ग्रंथों, साहित्यिक पुस्तकों और स्व अध्याय के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार किया। महादेवी वर्मा ने उनके संबंध में कहा है कि उन्होंने जीवन की पुस्तक की प्रत्येक पृष्ठ को जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह पढ़ा। यह बात उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुप्त जी की प्रतिभा किसी परीक्षा या डिग्री की देन नहीं थी। उनका ज्ञान जीवन, समाज, संस्कृति और भारतीय परंपरा के गहरे अध्ययन से विकसित हुआ। गुप्त जी के पिता स्वयं भी कवि थे।

गुप्त जी की सबसे बड़ी पहचान भारत भारती से निर्मित होती है। यह कृति भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत भारती को अतीत, वर्तमान और भविष्य तीन खंडों में विभाजित किया गया है। अतीत में भारत के गौरवशाली इतिहास का स्मरण है, वर्तमान में सामाजिक और राष्ट्रीय पतन का चित्रण है तथा भविष्य में एक जागृत और सशक्त भारत की कल्पना है। कवि लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह प्रश्न केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि आत्मबंधन का आह्वान है। भारत भारती की विशेषता यह है कि गुप्त जी का राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग तक सीमित नहीं है, वे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ते हैं। वे भारतीयों को अपने अतीत पर गर्व करने के साथ साथ वर्तमान की कमजोरियों को पहचानने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हालांकि उनके काव्य में प्राचीन भारत के गौरव का चित्रण कई बार आदर्शीकरण की सीमा तक पहुंच जाता है। इतिहास को वे प्रायः प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं, इसलिए उसमें आलोचनात्मक इतिहास दृष्टि की अपेक्षा सांस्कृतिक गौरव की भावना अधिक प्रबल दिखाई देती है। फिर भी उनके समय के राष्ट्रीय जागरण को देखते हुए यह दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है। गुप्त जी की राष्ट्रीयता की एक बड़ी विशेषता उसका समन्वयवादी स्वरूप है। उसमें संकीर्णता की उपेक्षा आत्मगौरव, नैतिकता और सांस्कृतिक चेतना अधिक दिखाई देती है। राष्ट्र उनके लिए केवल भूभाग नहीं बल्कि एक सांझा सांस्कृतिक और भावात्मक समुदाय है। इसी राष्ट्रीय चेतना के कारण उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में व्यापक सम्मान मिला। महात्मा गांधी द्वारा उन्हें राष्ट्रकवि कहे जाने की परंपरा ने उनकी साहित्य पहचान को और मजबूत किया। लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति राजनीतिक पद में नहीं बल्कि उस साहित्यिक प्रभाव में थी जिसके माध्यम से उन्होंने सामान्य जनता के बीच राष्ट्रीय चेतना और नैतिक मूल्यों को पहुंचाया। उनकी धार्मिकता का महत्वपूर्ण पक्ष धार्मिक समन्वय है। वे धर्म को मनुष्य को विभाजित करने का माध्यम नहीं मानते। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं, भेद व्यवधान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, उनकी सर्वधर्म स्वभाव की भावना को व्यक्त करती है। काबा और करबला तथा गुरुगुल जैसी रचनाओं में धार्मिक सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश मिलता है। गुप्त जी के

साहित्य का मूल स्वर अंततहा मानवतावाद है। वे मनुष्यत्व को जाति और धर्म से ऊपर रखते हुए कहते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व सबके ऊपर है, मान्य मही मंडल के बीच। यह दृष्टि गुप्त जी को केवल राष्ट्रवादी कवि न रहकर मानववादी कवि बनाती है। उनके काव्य में नैतिकता और आदर्शवाद की प्रधानता कभी उपदेशात्मकता का रूप भी ले लेती है। यही गुप्त काव्य की एक सीमा मानी जा सकती है। गुप्त जी के साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उनकी नारी दृष्टि है। सागिद की उर्मिला और यशोधरा की यशोधरा उनके काव्य में स्त्री त्याग के धैर्य और आत्मबल को सामने लाती है। विशेष रूप से उर्मिला का चरित्र उल्लेखनीय है, लेकिन रामकथा की पारंपरिक संरचना में उर्मिला अभिशागृत उपेक्षित पात्र रही थी, लेकिन गुप्त जी ने उनके मौन त्याग और मानसिक पीड़ा को काव्य के केंद्र में लाकर उन्हें नया साहित्य महत्व दिया। यशोधरा में भी वे उस स्त्री की मनस्थिति को स्वर देते हैं जिसका पति बुद्धत्व की खोज में उसे छोड़कर चला जाता है। इस दृष्टि से गुप्त जी ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में उपेक्षित स्त्री पात्रों को आवास दी। गुप्त जी केवल राजाओं, देवताओं और पौराणिक पात्रों के कवि नहीं थे, उन्होंने सामान्य जनजीवन को भी अपने साहित्य में स्थान दिया। किसान जैसी रचनाओं में कृषक जीवन की समस्याओं और पीड़ा सामने आती है। उनके साहित्य में सामाजिक शोषण, नैतिक पतन और अन्याय के प्रति चिंता दिखाई देती है। वे समाज के आत्मनिरीक्षण पर बल देते हैं, इसी कारण उनका साहित्य सामान्य पाठक से जुड़ा सका। उनकी लोकप्रियता का एक कारण उनकी भाषा की सहजता भी है। कला की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य की सशक्त भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भाषा सरल, सुगठित, परिष्कृत और जन सामान्य के निकट है। उसमें प्रसाद, औज और माधुर्य तीनों गुण दिखाई देते हैं। उन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग किया, जिससे विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव हुई। साथ ही आवश्यकता के अनुसार लक्षणा और व्यंजना का भी प्रयोग किया। उनकी काव्य में प्रबंधात्मक, विवरणात्मक, उपदेशात्मक और नाटकीय जैसी विभिन्न शैलियां दिखाई देती है। समग्र रूप से देखे तो मैथिली शरण गुप्त का साहित्य भारतीय नवजागरण और आधुनिक हिंदी साहित्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। उन्होंने मध्यकालीन और पौराणिक परंपराओं को आधुनिक राष्ट्रीय, सामाजिक और मानवीय चेतना से जोड़ा। उनके काव्य में अतीत के प्रति श्रद्धा है, वर्तमान की समस्याओं के प्रति चिंता है और भविष्य के प्रति आशा है। यही त्रिवेणी उनके साहित्य को विशिष्ट बनाती है। आज जब समाज, जाति, धर्म, भाषा, राजनीति और अनेक प्रकार के विभाजनों से जूझ रहा है, गुप्त जी का मनुष्यत्व का संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक दिखाई देता है। जब राष्ट्रवाद कई बार संकीर्णता का रूप ले सकता है, तब उनका ऐसा राष्ट्रवाद याद आता है जिसमें आत्मगौरव के साथ मानवता भी है। जब धर्म के नाम पर विभाजन की स्थितियां उत्पन्न होती है, तब उनकी सर्वधर्म समभाव की पंक्तियां स्मरणीय हो उठती है। और जब मनुष्य अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख होता है, तब उनका कर्म और नैतिकता का संदेश हमें सक्रिय होने की प्रेरणा देता है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी चेतना के कवि हैं, लेकिन केवल राष्ट्रवाद के कवि नहीं। वे राम भक्त हैं, लेकिन केवल धार्मिक कवि नहीं। वे आदर्शवादी है, लेकिन केवल उपदेशक नहीं। वे नारी के त्याग के कवि है, लेकिन केवल परंपरागत नारी छवि के कवि नहीं। उनके साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति इन विभिन्न धाराओं के समन्वय में है। अंततः कहा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक साधना भारतीय समाज को उसके अतीत से जोड़ते हुए वर्तमान का आत्मनिरीक्षण कराती है और भविष्य के लिए नैतिक एवं मानवीय आदर्श प्रस्तुत करती है। उनकी कविता में राष्ट्र है, संस्कृति है, धर्म है, समाज है, स्त्री है, किसान है और सबसे बढ़कर मनुष्य है। इसलिए उनकी साहित्यिक प्रासंगिकता केवल उनके युग तक सीमित नहीं है। उनके काव्य की मूल चिंता मनुष्य को अधिक संवेदनशील, नैतिक, सक्रिय और मानवीय बनाना आज भी उतना ही आवश्यक है। यही उनकी

0: साहित्यिक विरासत है और यही कारण है मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण और स्मरणीय कवि के रूप में आज भी हमारे बीच जीवित है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए हम उनकी इन पंक्तियों को याद कर सकते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, अभी आवो विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम उनके साहित्य को पढ़ने, समझने और अपने जीवन में उनके मानवीय मूल्यों को अपनाने का संकल्प लें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को विनम्र श्रद्धांजलि।
1: अभी तक आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णप्रीति एआर की वार्ता, हिंदी के महान कवि मैथिली शरण गुप्त। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।
2: इन हिंदी चलचित्र गानम केल्काम, दिल से എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ലതാ മങ്കേഷ്കർ, എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ ആലപിച്ചത്.
3: ജിയ ചലേ ജാ ചലേ।

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇനി രാത്രി 10:30 കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44:55. ഇനി 8:45 സമാചർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: നമസ്കാര്, ആകാശവാണി സേ സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത് മേ മുനീഷ് ശർമ്മ. मुख्य समाचार. संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित. ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा. सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया. गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और

0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल

0: रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
0: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।

0: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आई। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles.